0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 167।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji, stay tuned.
2: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
3: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
4: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
5: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर रेडियो हाँ जी 1674 AM अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए हाँ जी हाँ जी अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Chill, I should drop it low, man.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
3: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए.
4: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा.
5: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा.
6: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: राम सभी भाइयों ने
1: राम राम चौधरी चौधरी रंजीत सिंह जी और हमारी छोटी पप्पो यश जी के हाल आप
2: ठीक बो ठीक बो अगों की कहते भला इधर शो हों ठीक सह जा रहा सह ठीक सह हाँ ठीक सह हाँ क्या सुनावे सह
1: भाई सुनावे भाजी अज कि मदन दे अपनी ओम याद कर रहा वा कुछ मैं लिखिया सी पर जो लिखिया सी ओदो एहसास होर सी अज सुना रहा
2: गर्मी च लिखिया होनी ना हम ठंड हो गई
1: मौसम का भी सुभाव है पर कोई चीजा आत्मिक तौर पर रह जाती है शरीरिक तौर पर चली जाती
2: है
1: फिर हूं जाके कई बार लगता भी उदू भी लिखिया भी हूं जाके कि टुक गई चीजा ना बंदे लगता यार मैं उदू इस एहसास में कि लिख दी है वो मैं एक कविता भी सुनावगा तो फिर एक मम्मी की हादसे की गल भी सुनावगा तुम बड़ी कविता इदा जी जी करदा कुछ खास लिखा दिल विच उठदी एक आस लिखा दूर देसा विच बैठी अमड़ी मैं जाके उसदे पास लिखा जी करदा कुछ खास लिखा पुत परदेसा नूं तोर के दिल ते पत्थर धर लैंदियां ने रब ही जाने किवें वी पसीने दे इह सबर जिहा जर लैंदियां ने मां मेरी दे मेरे सिर कर्ज बड़े ने मैं ना उसके अपने सुवास लिखा जी करदा है कुछ खास लिखा दिल विच उठदी आस लिखा मंगियां सदा मेरियां कैरां दित्तियां हमेशा दिल तो दुआवां अनजान मुल्क सी ते औखियां पैड़ां कर दित्तियां सब सौखियां रावां प्यार तेरे नूं मैं हमेशा तरसा दिन रात मैं अपनी प्यास लिखा जी करदा है कुछ खास लिखा दिल विच उठदी अरदास लिखा तेरे बाजो मीत नूं किसे पुछना नहीं चाहे लखा दौलत कमा ली तेरी काट हमेशा महसूस होवे भावे दुनिया नवी वसा ली है तू उथे अपने सा पूरे कर गई मैं इथे बैठा तेरी तलाश लिखा जी करदा है कुछ खास लिखा दिल विच उठदी आस लिखा
2: बहुत सोहना बहुत वधिया तू सब थैंक यू
1: बाकी मेरे जिन्ने मेरिया मेरी मोम तो जान तो बाद मेरिया चाचिया ताइया मेरिया भूआ मेरी मासिया सारिया ने बहुत सोहना प्यार दिता एक माँ का प्यार भी दिंदिया ने उन्होंने सारिया मतलब दिन की मुबारक धन्यवाद करता उन्हों का सारे भैं का भी भैं वड्डिया भैं भी मावा बन के प्यार कर दिया
2: बिलकुल
1: एक मैं हूं मैं खुशी न याद करदा हमेशा अपनी माँ को भी जो सू इन्नी सोहनी लागत साड़ी माँ तो लेके गई है रियली थैंकफुल भी अस कोशिश करते बच्चों जो यही चीज अगे फॉरवर्ड करिए बाकी आना जाना संसार का एक रूल है तो हादसे की गल इदा भी मैं ते मेरा छोटा भरा ना दोनों जो अः दिन एतवार सिर नाला खेड निकल जाना वापस असी मुड़े नहीं भी आके जाके वाल सुट दिन जाके जूड़े करा लिये ना असी सवेर के निकले तो शाम पै गई तो वापस नहीं मुड़े ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਨਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਗਹਿਣੇ ਮੋੜੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਖੇ ਨੀ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂੜੇ ਰੱਖਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਘਰੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਪਿਆਰ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੰਡਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋਤਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਨਾ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੰਮੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਆ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੋ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਾ ਠਾਠਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ 000 ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਹੈਲੋ हाँ जी, तो फिर आप ब्रेक तो बाद ही मिलते हैं जी, तुम कॉल करके तो होल्ड तो तुम रह लो, मिला तो ते ना फोन कोई आ रही है प्रॉब्लम जो वार बार तुम करते हो वार बार कटिया जाता, तो जा फिर तुम कोशिश करो कि ब्रेक तो बाद करो। एक आप नहीं जी ब्रेक लें तो फिर करते हैं वापसी। तुम सुन रहे हो रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन तमाल।
4: नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।

0: हाँ वे सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
2: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
3: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
4: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
5: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो,
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM 24/7 ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਿਡਨੀ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन तमाल।
5: ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਵਾਕ, ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
2: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
3: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
4: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
5: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
8: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो,
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस। हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा स्मार्ट चॉइस।

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: हम थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.
4: Thank you.

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हितर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

करना है, तेरा दिमाग खराब है बेटा, ग्यारहवीं च नीट की तैयारी कर, तो बाद चो फिर तेन बी डी एस की सीट लै देवे, तो बनी डेंटिस्ट, सही कि नहीं, कि होंगे है ना अपने सिंगर्स लो, सोचो डॉक्टर सरताज अज रॉड लिवर के अंदर दो लगातार शो ने उन्होंने, सोचो सदन हेमिसफेयर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पंजाबी च गाण वाला सिंगर एंड राइटर दो वारी एक अरीना फुल करता है, दो वारी, सोचो ही ऑलसो हैड लिसन टू अदर पीपल, है ना, एक गल ये भी आ जाती कि भाई थोड़े को उस लैवल का टैलेंट है कि नहीं है, थोड़े को उस लैवल का थोड़ी कलम या फिर थोड़ा बल्ला या फिर जो भी थोड़ा पैशन है वो अंदर कुछ है कि नहीं है, पर मेरे ख्याल अज के दौर च एटलीस्ट असी अपने आप ना इन्ना तो कर सकते हैं कि जो सानू करन दी इच्छा है, जो असी पाना चाहते हैं वो लिए एज अ साइड हसल तो हसल कर सकते कि नहीं कर सकते, राइट। तो दूसरा जी आ जाता पॉइंटर जिदे उपर आप गल करते पे है सोशल मीडिया, हुण असीं वेखदे हां जी सारा दिन लोग किन्नियां ही है ना रीलां पैंदियां, किन्नियां पोस्टां पैंदियां, काफ़ी लोगों का मन करता बई आह सारियां पोस्टां वेख के कि भाई मैं भी कुछ पावां, मैं भी कोई पोस्ट करां चीज़, मैं भी कोई रील बनावा, पर फिर लोगों को पता नहीं है कि मैं की बनाना। हुण ए हैगी है डबल साइडेड प्रॉब्लम, पता किद्दां, एक है जी जिहड़ा जेन्युइनली चाहता कि मैं क्रिएटर बना, पर वह घबरांदा कि आ जिहड़े लोग मैनू पिछले 30-40 साल तो जानते वह कहणगे इन्नू कित्थों आ गया बई, इन्हें कित्थों डायरी कढ लिते जिहदे अंदर इन्ने वधिया वधिया इन्ने शायरियां लिखिया पईआं, या फिर ए वाला गला इहदा कित्थे सीगा जिथे इन्ने वधिया वधिया सुर लगदे पए आ, है ना। तो दूसरे पासे ये हुंदा कि भाई सारे करदे पए आ, देखो हर सिक्के दे दो पहलू हुंदे आ, दूसरे पासे हुंदा यार सारे करी जा रहे मैं नहीं कर रहा, सारी रीलां पा रहे मैं नहीं रील पा रहा, फिर हुंदा कि जी कोई भी गाना आ गया पुट्ठा सिद्धा स्टैप मार लिया कुछ कर लिया, ठीक है योर विश, पर योर विश एंटरटेनमेंट इज ऑलसो अ चॉइस ना, असी लोग तो इस स्पॉटलाइट इफेक्ट के कारण एंटरटेनमेंट भी वो वाला चूज़ करते हैं जो सानू समाज कहता चूज़ करन नू, हुण सारे लोग रील बनाना शुरू हो गए तो किन्नियां नू हुण बनानी पैंदी है बई, कि क्योंकि आ फलान ढमीक आ जिन्हें भी सानू लोग जानते रीलां बना रहे असी ना पिछे रह जाइए बई कितने, है ना, पर बई हाउ डज इट मैटर, की फर्क पैंदा जे कोई होर रील बना रहा तो मैं भी बनावा ही बनावा, या फिर की फर्क पैंदा कि मैं रील बनावा तो पावा तो लोग की कहणगे, लोग कुछ नहीं कहणगे, थानू पसंद आना चाहिए, खुद नू पसंद करना सीखो, खुद नू जदों कोई भी चीज़ पसंद आएगी जदों खुद दी मौत च रहोंगे फिर आप ही सब कुछ ठीक हुंदा, सही कि नहीं। क्योंकि ये पॉइंट भी ना याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ आंदा साडे अंदर ना एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है कि एक गुलाम माइंडसेट तो कि असी गिज्जे हुए हैं, सानू सिस्टम ने इस तरह बनाया कि थोड़ा तुसी एक सैट रूल्स फॉलो करना विच इज़ नॉट रोंग, है ना, पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रोंग, कि आपां ओह रूल्स नू फॉलो करते हुए उस सिस्टम नू फॉलो करते करते कई बार अपनी पहचान तो असी जो असल च हो सकते हैं उहदे तों वंचित रह जाने, फिर हुंदा पता की है, हुंदा है कि लाइफ का ना एक टाइम आता, इस तरह का हर बंदे की लाइफ च एक टाइम आता जदों ना कल्ला बैठा सोचता कि मैं की हो सकता सी ते मैं की हाँ, एंड जो फर्क वेखदा इन्हों दोनों चीज़ों के अंदर तो वह सोचता कि वैसे जो मैं जो हो सकता सी उहदे लई मैं ट्राई कर भी लैंदा तो डजन मैटर, वो जिहड़े चार लोग सीगे बाकी वो इंट्रस्टिड नहीं सीगे क्योंकि वो चार लोग सिर्फ मेरे जहन च मेरे घर वालियां दे शायद जहन च सीगे, असल च वो चार लोग किते भी एग्जिस्ट नहीं करते। होर अगे आपां गल्लां नूं जे वधाईए तो एक एक्चुअली गल्लां वधाउण तो पहला यार मैं इन्ना ज़्यादा थोनों गल्लां बातां सुनाई जा रहा है ना, थोड़ा जा गाना शाना भी तो होना चाहिए गाइस कि नहीं होना चाहिए, चलो फिर थोनों एक प्यारा जा गाना सुनाने तो फिर आने आप लास्ट सैगमेंट ऑफ द शो ते।

0: अपनी जैसे भाई ना डॉक्टर को दे डॉक्टर साहब जी अपना ना मेरी घर आई पैरासीटामोल खा लिया
1: आवाज बड़ी अज ना दबी दबी जी
0: अपना अपना
1: खेडते रहो जी अज दिन शुक्रवार का रुपिंदर जी कहते हैं कि चढ़ती कला च रोक करगी बंद तो करते हैं मैसेज बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी थोड़ी तो सत श्रीकाल कहते हैं कि अज मेरी बेटी सुखम कौर का 11वां जन्मदिन है कुड़ी जी प्लीज विश हर फ्रॉम डैड एंड मोम इन्हों के ब्रदर शपेक सिंह ते सिस्टर सहज कौर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू
2: सुखम
1: हैप्पी बर्थडे टू यू
2: बहुत बहुत मुबारक बर्थडे की उम्मीद कर दिन बहुत वधिया जाए तुसी बहुत सोहना ना कमाओ पढ़ लिख के माँ प्यो का ना रोशन करो ते खूब तरक्की करो ते अपना दिन बहुत सोहने तरीके नाल परिवार नाल इंजॉय करो ते साडे नाल एक खुशी सांझी करन लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद जी बहुत शुक्रिया तुहाडा ते दीदी जी लोराले आंदे ने कि अज दा रेट 201 डॉलर हो गया एक ग्राम दा बाई कैरेट दा इहदा मतलब भी वध रहा हौली हौली थैंक यू जी थैंक यू धन्यवाद कहिंदे कि मैनू तां अज समझ नहीं आया कि तक दी गलती ते दूजे सिस्टर दी मैनू ते सारे दे सारे बहुत स्याणे लगे वैरी कंफ्यूज्ड तुसीं भी दस्सिओ तुहानूं किद्दां गलती लगदी है
2: किहदी गलती लगदी है
1: प्रिया जी अमित जी शाइन जी कुलदीप सिंह जी कहते हैं दिन वधिया वधिया रहे नीरा जी सत श्रीकाल भेजते हैं सत श्रीकाल अमनदीप ढिल्लों जी गुड मॉर्निंग भेजते हैं गुरविंदर जी सत श्रीकाल भेजते हैं तो कहते हैं कि सैटरडे माई डॉटर द बर्थडे आ जशविथा कौर का संडे यंगर डॉटर एम्बर का बहुत बहुत बधाई जी तुम एडवांस के बहुत बहुत बधाई तुम वाहगुरु चढ़ती कला च रखे तंदुरुस्ती बख्शे गुरदीप देओल जी कहते हैं कि सत श्रीकाल बलकूलगा तो सुखदीप सिंह घूमण जी सत श्रीकाल भेजते हैं शिवानी गर्ग जी सत श्रीकाल भेजते हैं कहानी पसंद करते हैं तो कहते हैं कि किनिया थावान बदल लवो जदों तक अपनी बुरिया आदत नहीं बदलोगे उदों तक हर जगह तुम दुखी रहोगे कहानी अज की वधिया सी धन्यवाद घूमन साहब रजिंदर पावा जी सत श्रीकाल शुभ दिन दी कामनावां भेजते हैं मनिंदर कौर रखड़ा जी गुड मॉर्निंग भेजते हैं तो हरिंदर जी सिंह जी ब्लैक टाउन सिडनी तो सत श्रीकाल भेजते हैं सुखविंदर भैन जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा ते हुण लईने तुहाडे कोल इजाजत हसदे खेडदे रहो चढ़दी कला दे विच रहो ते सुणदे रहो रेडियो हां जी 1674 AM

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच वी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406 966 668 और विजिट shipglobal.au।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: You are listening.
5: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji.
6: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian radio station.
5: Radio Haji.
4: Stay tuned.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहना एतवार भी स्कूल लगन मसला दा मौका मिलदा रीलां तो बचन दा।
4: अरे बोलो पप्पू दे पापा,
5: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ श्रीपाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो मैं हूं सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हितर श्रींचीचा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji, 1674 AM. Sunte rahiye, sunate rahiye, bajate rahiye, jo karna hai kariye, lekin haste rahiye.

इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: सब कुछ हुन दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: रास्ता।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
2: हांजी रेडियो

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM

0: दात इसको नमस्कार
1: तब की उस्तत करो दिन रात तिसे त्या वो सास गिरा
0: सब कछ वरत है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेल अब करने हार दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन से
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम पग जना कह मन विश्राम अट तेरा श्लोक
0: तजो स्यानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: मन की टेक विधि सब जानू देवन को एक है भगवान
0: जिस कह दिया रह अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए
1: मारे राखे एक आप मान कह कुछ नाही हा
0: तिसका हुक्म बूढ़ सो खोए तिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर पर सोए नानक बिघ्न लागे कोई
0: उस तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
0: नैनो पे ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म सरवन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा
1: वडबागी ते जन जग माहे सदा सदा हर की गुण गाहे
0: राम नाम जो कर है बीचार से धनवंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछाने एतुत की हो सूझी जाने
1: नाम संग जिसका मन माने नानक तिन निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपन आप सूझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सा संग हर हर जस कह तु सर्व रोग त्यो हर जन नह तु
0: अंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागे दुख
1: जिसको हर पर मन चित आवे सो सन सुहेला नहीं डुलावे
0: जिस पर अपना कृपा कर सो सेव कहो किसते डर है
1: जैसा सत तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोद सीजा गुर प्रसाद तत सा बूझिया
1: जब देखो ता सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: नह किछ जन्म है नह किछ मर है आपन चलित आप ही कर है
1: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट
0: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थापो थाप
1: अविनाशी नाई किछ खंड तारन धार रो ब्रह्मांड
0: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख बिसारन
1: आपे मेल लए कृपाल गुर का सज पै निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करह बड़ भाग है
1: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
0: जो किछ करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा सह हर संग
1: सह सुभा होवे सो होए करने हार पछाणे सोए
0: प्रभु का किया जन मीठ गाना जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिसते उपजे तिस महे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हों बनाए
0: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम भग जना कै मन विश्राम अठ चौदह श्लोक
0: सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरिय नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप अमनासी प्रभा पे आप
0: आपन की आकछू न होए जी सौ प्राणी लोचै कोए
1: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल घट सो है
1: तनवंता होए क्या को गर्व है जा सब की तिसका दिया दरब है
0: अत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे
1: जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गवार
0: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग
1: ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
0: ज्यो पाखान नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्तार है
1: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
0: ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए
1: दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्या तुत सह चितार
0: जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिर जान
1: कौन बसताई तेरा संग लपट रहो रस डूबी पतंग
0: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद से कर जाहे
1: जिसव कर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
0: ताजब मान ले हो मन मूल राम नाम हृदय महतोल
1: लाद खेप संत संचाल अवर त्या विख्या जंजाल
0: तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए
1: हो वापार बिरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
0: चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए
1: अनक विघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: उठ गई संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया
1: मृतो को जीवा लनहार पुखे को देवत आधार
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पुर्व लिखे का लहना पाहे
1: सब तिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
0: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एह करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
1: भगत भगत सुनिए तिह लोए जाके हृदय को होए
0: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सतमुख ਰਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦਿਸਾ ਚ

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti, and welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Sister, last episode mein hum baat kar rahe the about victim kaun hai aur
1: master kaun hai.
0: Master kaun hai. अभी आपने जिस चीज को मैं अभी तक मास्टर समझता आ रहा था उसको विक्टिम बोल दिया. अब 360 डिग्रीज का चेंज है मेरी थिंकिंग और आपने जो सिखाया उसमें.
1: विक्टिम मीन्स कौन? स्लेव मीन्स कौन? जो गुलाम है, जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का. और एक है जो अपने मन का गुलाम है, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह चलाए वो नहीं चला सकता है. वो गुलाम है. जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है. और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है. सी, वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है,
0: मैं पेन लेके टिक टिक टिक टिक,
1: चलो ठीक है, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स,
0: प्लास्टिक की थैली में से सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ.
1: अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते. एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. And at that time I say, you irritate me, right? You irritate me. And then I go to the extent of saying, you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है. ये बहुत irritating है. ये बहुत irritating है. या ये मुझे irritate कर रहा है. Means, कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है. राइट. अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर. या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं. मतलब यहां आपका एक्शन, यहां इरिटेशन. ठीक है, दो चीजें हो रही हैं. ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूं मेरा मन वापस शांत हो जाए. तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूं, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड, वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से. ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना. दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं. तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूं अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए. या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ. आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है.
0: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा.
1: मैंने सोचा भी नहीं
0: ऐसा, मैं अपने आप को बोलूं. मैंने तो ये नहीं सोचा. मुझे लग रहा है ये माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, कर कर कर कर कर कर, अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं.
1: वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं
0: वो राइट है,
1: वो राइट है या रॉन्ग है. अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है, तो किसी का मोबाइल बज जाता है. अभी वी कैन से, इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए. ओके, राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में है, मेडिटेशन में है, मंदिर में है, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे. ओके, लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड. अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं. एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मन शांत हो जाए. दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग. आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस.
0: आई वांट
1: पीस एंड हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम. अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया,
0: बच्चे को सिखाते नहीं है, ये नहीं है,
1: हाँ, ये सब चीजें, हाँ, ये मेरी थॉट्स चलने शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू
0: कि थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें.
1: राइट, कितनी सारी थॉट्स. सी, ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना. आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की. व्हाट इज द इरिटेशन? योर विच इज वेरी ब्यूटिफुल. लेट अस चेक. व्हाट इज द इरिटेशन? द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स विच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज.
0: मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चिप चिप चिप चिप चिप चिप मुझे वो चीज मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहा है.
1: वो
0: मैं नहीं कर रहा हूँ.
1: एक प्लास्टिक का पैकेट. हाँ. एक बॉल पेन का टिक टिक.
0: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी.
1: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी. थॉट कहाँ क्रिएट होती है?
0: मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसकी इरिटेशन.
1: यहाँ क्रिएट हो रही है ना.
0: हाँ, मेरे मन
1: मेरा
0: में.
1: मन कहाँ पे? यहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. प्लास्टिक बज रहा है वहाँ. बॉल पेन टिक टिक हो रहा है
0: वहाँ.
1: मोबाइल बज रहा है वहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. किसने क्रिएट की?
0: इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने.
1: बट उस बॉल पेन
0: इनके बिहेवियर ने.
1: इनके बिहेवियर यहाँ है. आपका बिहेवियर यहाँ है.
0: बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना.
1: बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना. अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बिहेवियर यहाँ है. लेट्स से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी एक मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है. आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है. वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है. यहाँ वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा.
0: उसकी वजह से हो रहा है.
1: उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है?
0: कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन की? आपने बोला कि आई क्रिएट, आई चूज, आई एम थिंकिंग.
1: आस्क सेल्फ एंड लेट्स चेक इट इमीडिएटली. 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में. बीच में सेंटर में कोई फोन बजाए या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे.
0: कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है.
1: राइट.
0: तो
1: अलग अलग थॉट्स ना.
0: हाँ.
1: तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया.
0: जी.
1: किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में थॉट?
0: अलग अलग आदमी ने.
1: क्रिएटर कौन है वो फाइनल?
0: मैं क्रिएटर हूँ.
1: प्लास्टिक
0: मुझमें क्रिएट हो रही है.
1: ये पक्का?
0: हाँ,
1: ये 100% नहीं ना कि वो प्लास्टिक
0: और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ.
1: वो भी कोई बात नहीं. इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चुर चुर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है. वी वर सेइंग दैट इज क्रिएटिंग दिस एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज इरिटेटिंग. That is irritating.
0: That person is also irritating.
1: That person is also irritating. Because that person's behavior caused me to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी. एक चीज हमें कंप्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा. जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन. ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है. उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहाँ है. यहाँ तक सीमित है. कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा. यू नो, लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल. सी, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ.
0: दस सेकेंड पहले एक चिड़िया जरूर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला जब आप बात कर रही थी, तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई। वो तो एक्सेप्टेड था ना,
1: एक्सेप्टेड,
0: क्योंकि हम जंगल में हैं,
1: राइट।
0: चिड़िया बोलेगी, कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी,
1: राइट।
0: तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली,
1: बोले एक्सेप्टेड है। लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे, नॉट एक्सेप्टेड।
0: अभी आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ।
1: हाँ, ये भी है ना, बाहर खाओ, ये नहीं मालूम आपको। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं?
0: अपने आप को, अपने मन मन में दूसरे को दे रहे हैं।
1: दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं? यू आर द कॉज ऑफ माई पेन।
0: करेक्ट।
1: योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट इज कॉजिंग मी पेन। आई वॉन्ट हैप्पीनेस इन लाइफ, प्लीज चेंज। ये इक्वेशन हमने बना ली जीवन की। आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए, प्लीज चेंज। सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं?
0: यही,
1: औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना।
0: मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है।
1: वो भी ठीक है, अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है,
0: बट इरिटेट नहीं होना है। ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको, लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था,
1: वो भी इरिटेशन।
0: देखो,
1: सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया, वो भी
0: तो लिफ्ट दूं।
1: नहीं नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: अब ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने
1: ब्लेम किया। उसको किया,
0: उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा,
1: कर्टेसी
0: नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं, परफेक्ट, सी ऑल दीज लाइंस आर सो ब्यूटीफुल। उसने लिफ्ट मांगी, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से,
0: गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में,
1: मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया,
0: और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया।
1: ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया, सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर थिंग्स। लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फाइव थिंग्स? ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल?
0: मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना।
1: मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है।
0: प्रैक्टिकल में देखो, आप
1: प्रैक्टिकल में
0: आप यहाँ बैठे हैं, धूप लग रही है,
1: राइट,
0: तो आप बोले यार बहुत धूप लग रही है,
1: परफेक्ट,
0: और छांव में जाओगे बोलेगे कितना ठंडा, अच्छा है,
1: परफेक्ट
0: बोलेंगे। इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोलूंगा सब कुछ बुरा लगा।
1: अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, उतनी देर में
0: से उतर के चले नहीं गए, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए।
1: प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो देके गए हैं मुझे, चैलेंजेस। अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रहे हैं। उतनी देर में आपको एक फोन आ गया और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई कि शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है। अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना?
0: नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी।
1: अब वो बात गई,
0: वो गई,
1: अब वो थॉट गई। अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर। हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिम्युलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की। जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिम्युलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गए। अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया, एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडेज स्टॉक मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एंड आई केप थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, एंड मैंने कहा हुज रिस्पॉन्सिबल? द मार्केट। यू नो, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सब में फ्लक्चुएशन होती है, ये सब हो रहा है। उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर, अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई, बात बड़ी थी लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई, अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अब होगा क्या, जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें अभी उसके सामने, गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात, फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया। लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी, उसमें इस तरह की थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया था,
0: सब हिला दिया
1: था, हिला दिया था ना, मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया। ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई, तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा, स्टेबिलिटी
0: नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो।
1: यस,
0: ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ,
1: right.
0: वो मेरा 1-0 से शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 61-62 शुरू होगा,
1: एब्सोल्युटली
0: 0-10 नहीं होगा,
1: नहीं होगा, क्योंकि मैं
0: ऑलरेडी 75 आना है तो 60+75 होगा।
1: मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्ब्युलेंट, एंड आई विल बी लाइक, फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रिहेंशन, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है। उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है, अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे,
0: ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक
1: और प्रॉब्लम, गो इवन मोर टर्ब्युलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्ब्युलेंट। अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट से ये व्यक्ति लिफ्ट ना लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे, और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए
0: सिर्फ कि
1: फैमिली में कुछ हुआ है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन। तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा या जो भी वो थॉट्स आएंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्ब्युलेंस। लेकिन जब छोटी बात में टर्ब्युलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्ब्युलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड केओस। वाई टूडे वी सेड दैट देर इज केओस इन आर माइंड, क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती है, बड़ी बड़ी बातें, ये जो चैलेंजेस बड़े कि फैमिली में कोई हेल्थ, बिजनेस में कोई क्राइसिस, रिश्तों में कोई क्राइसिस, कभी कभी आता है जीवन में, सिर्फ ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार,
0: लेकिन चार बार। आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई, जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का,
1: सिंपल तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी, दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन, डोंट ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ इन बिग सिचुएशन। हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ।
0: लेट अस ओनली शुरुआत कैसे करें,
1: छोटी छोटी बातों में, एंड छोटी बातें में
0: समझो, चिप्स वाली बात, चिबड़े वाली बात,
1: हाँ, कुरकुर वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रखती या जोर से दरवाजा,
0: भाग के दूसरी को सीट ले लें, भाग जाए, क्या करें,
1: वहीं बैठे, इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट, लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता, अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी, हे मन, मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो, शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम स्लेव, स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है, अपने मन के मास्टर, रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर दो थॉट्स क्रिएट कर ली ना, दैट्स ऑल दैट वाज नीडेड, 50 थॉट नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए, बस कर दिया ना उन्होंने वो, ठीक है, उनको नहीं आता था कैसे करना है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल चूज।
0: चिप्स जब खत्म हो जाएंगे आप ही तो आवाज बंद हो जाएगी,
1: नहीं भी आएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
0: जब जोर से चिड़िया बोली कौवा भी बोला,
1: यस, तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दिस क्लैरिटी, ये नॉलेज, दे आर नॉट इन माय कंट्रोल, ये इक्वेशन फिक्स्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय थॉट। हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है थॉट, जैसे आपने कहा ना, मैं चूज थोड़ी कर रहा हूं गंदी वाली थॉट क्रिएट करनी, अगर मैं चूज करता तो अच्छी वाली करता, कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने चूज थोड़ी किया. चूज कैसे करना, दैट्स अ सेकेंड पार्ट. फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज ओनली हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट, एंड फॉर दैट वेरी इम्पोर्टेंट, नेवर एवर आर नाउ वी गोइंग टू से दे आर इरिटेटिंग, दे इरिटेट मी. नो, गेट इरिटेटेड, बट नाउ द लैंग्वेज विल हैव टू बी आई क्रिएट इरिटेशन इन रिस्पॉन्स टू देयर बिहेवियर. सो ये अब इंटरेस्टिंग गेम हमें सारा दिन खेलने हैं कि सिचुएशन, लोग, मेरा मन, दो एंटिटीज है.
0: ये अच्छा आप कह रहे हैं, गेम
1: गेम है ना, दो चीजें हैं.
0: मेरे कान में दर्द होता है वो देखिए, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है.
1: चलो इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए. हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट राइट. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, और आई टेल माई माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब.
0: इसको एक बार बोलूंगा, पांच मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, मेरी भी कुर्सी.
1: इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे. ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं. व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? लोग अपने अनुसार जीवन जिएंगे. आप सिर्फ ये दो ऑप्शंस को हर समय अब सारा दिन आज रखना है. ये होमवर्क है, ये होमवर्क है. सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, बड़ी चीज में नहीं करना कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया. फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे. एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन टच कर रहा है, कोई लेट आ रहा है.
0: छोड़ दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो चार औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना, वही सब्जी डाल देते जो पसंद नहीं.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: अब के सावन महादेव की भक्ति में डूबने के लिए बने रहिए रेडियो माइंड ट्री के साथ। हर हर महादेव।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
3: हाँ जी रेडियो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन।

0: हाउस। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी रेडियो हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

ग्रोवर्स, वी ग्रोवर्स, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर। रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: Baby, कोबेस पसंद है।
1: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
4: डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. Sunte rahiye, sunate rahiye, bajate rahiye, jo karna hai kariye. Lekin

0: हावे सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।